कौन जाने मेरा नाऊ जियो जिनी सखी शौर आवे आ जिन्हां ने पति दा प्यार प्राप्त कीता जिन्हां ने मालक दी खुशी प्राप्त कीती से अंबी छावड़ी ए जियो ओ अंबा दी छावे बैठियां खुशियां बाण दियां ने पति प्यार दे आनंद विच मगन ने जीवन दा रस लै रही ने से गुण मंज नावनी ओ गुण मेरे विच नहीं हौ कह जी दोष त्रेउ जियो मैं किदे ते दोष देवा किसनू आखा माड़ा के मेरी हालत किसने कीती आम तौर ते मनमुख दी ये दशा है कि वो जो भी करदा है ना

हम चमाया हम चाया हमें कर कर जंत पाया हमें बुझे तांद्र सूझे ज्ञान में होना कसगलू जय नानक हुक्मी लिखिए।

संभाले समरहा जिन करते करण किया चिंता भी करनी तहा सो करता चिंता करे जिन उपाय जग तिस जो हरी स्वस्थ स

वेद व्यास जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीत,

अनाज लियांदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नू भोजन छकाया, पानी पिलाया,

पैसा पाई गुरुदास जी ने चात मारी गुरु रामदास सच्चे पातशाह जीवन विच ते जीवन विच

बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे अमृतसर विच जोत जगावे। कहंदे ने सोडी पातशाह रामदास जिन्हां नूं सतगुरु जाणिया ते सतगुरु जान के पूजा कीती, जिन्हां ने फिर इतनी कमाई कीती के मानो उस परमात्मा दे शब्द दी जोत नूं अमृतसर हरी मंदर दे विच टिका दिता। भई जो भी आवे उस जोत दे दर्शन करे। इस कलयुग दे भयानक समय विच गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने हर एक नूं जोत दा प्रगटावा कीता। ए हुक्म होया सी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दा कि जाओ भाई हुण इत्थे बड़ी सेवा हो गई गोइंदवाल, हुण जा करके दरबार साहब अमृतसर दे विच जा करके नाम भी जपो ते फिर ऐसा मंदिर बनाओ जिदे विच हर कोई धर्म वाला आ सके। हर कोई गरीब होवे चाहे राजा होवे उथे हर एक दा सन्मान हो सके। ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने मानो उथे प्यार नाल प्रेम नाल इतना सिमरन कीता कि मानो उस परमात्मा दी जोत नूं हरी मंदर दे विच टिका दिता। ते भाई साहब भाई गुरुदास जी कहंदे ने जैसे सत मंदर कंचन